लसा इश्कहसा एटम वाम गंगू तारुण्य तुझ बेफाम लसा इश्कहसा एटम वाम।

धाम गलसा इश्कहता एकं वाहम एकंगु तारुण्य तुझ बेफाम गलसा इश्कहता एकं वाहम है।

0: दीदी से ब्रेकअप हो गया तो नैन्सी को भी भूल गया हो। फोन नंबर चेंज किया, कॉल नहीं किया, कुछ
1: okay,
0: नहीं।
1: ओके ओके ओके। अगर तुम्हें मिलता तो वो याद आती। I just wanted to get away from everything for a while. Okay now, I'll take your number.
0: You will call me.
1: I will call you.
0: Promise.
1: I promise. Take the same number, right?
0: Yeah. Are you okay now? Okay, let's dance, guys.
2: Hey.
0: Are you okay now? Okay, let's dance, guys.
2: Hey.
0: Let's dance.
2: Hey.
0: Go, go, go.
2: Hey.

0: इतनी जल्दी?
1: नजदीक आओ। मेरा नंबर, डायरेक्टली बात करना, डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके? वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्पो की तरह बिहेव मत करना। आई कैरी पेपर स्प्रे।
0: ओके।
1: बाय द वे नेहा,

0: चाची जी, दीर्घ सुमंगली भव, मतलब
1: जिंदगी भर बाल बच्चों के साथ सुखी रहो।
0: ओ अच्छा, सुना तुमने?

0: सिर्फ बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता।

0: और हिंदी कविता।
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।